शब्द विचार गुरु कर रे मन मेरे, गुरु कर शब्द सुपन अघन कटे सब तेरे, गुरु नैन पैन गुर गुर करो, गुरु नैन पैन गुर गुर करो, गुरु सत्य कव नल कहे, गुरु सत्य कव नल कहे, जिन गुरु न देखियो न कियो।

0: सच्च तेरे खंड सच्च ब्रह्मन सच्च तेरे नो सच्च आकार सच्च तेरे करण सब विचार सच्च तेरे अमर सच्च दीवान सच्च तेरे हुक्म सच्चा फरमान सच्च तेरे करम सच्चा निशान सच्च तू दाखिला करो सच्चे सब तान सच्चे सब दू
1: सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे बाजा नानक सच्चे सच्ची जो मर जमे सो कच कच महला पहला
2: वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े सच्चा वड्डी उड़े निश्चल था वड्डी उड़े जाने ला वड्डी उड़े बिरसा पाओ वड्डी उड़े पुछंदा वड्डी उड़े जा पिया नानक और नक थिन जे की तक ना सरु जा
0: महला दूजा ए जग सच्ची की कोठरी सच्ची कब जबा एक नाम कमाल एक नाम कुमे करबनास एक नाम पाणे कड ले एक नाम आया बचनवास ए पी आखन जापे किसने रा नानक गुरु जाने जाको।

निरंकार आकार अचल पूरन अविनाशी अर्खवंत आनंद रूप निर्मल विनाशी गुण गावै बेअंग अंक एक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जन प्रभुत्व में मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर बियो हर गुरु नानक जिन परसियो से जन्म मरण तो तेरे हो सत सत हर सत सत सते सत पणिया दूसरियान ना अवर पुरख पौरातन सुनिया अमृत हर को नाम लात मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो ते जान त्रिपुतियां काए जे ठाकर सो प्रसन्न पियो सत संगत ते प्यारा हर गुरु नानक जिन परसियो तिन सब कुल कियो उधार सत समा दीवान सच सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सचित पावस करियो सत श्री जियो संसार आप

मल्लो जय कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन्हु पाए हर गुर नानक जिन परसियो ते फिर बौड़ जून ना आए ते बौड़ फिर जून ना आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तित करिया सिद्ध साधक ते तीस को तिरकी मना परिया ब्रह्माद सनकाद सेख गुण अंत ना पाए अगोग्यो नहीं जाए पूर सर्व यो समाए जे गाडी सिलग दियार प्रभ से जान लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसियो ते इतई उतई सदा मुकते प्रभ दातो दातार परियो जातित इत सरना मिले दाम संतरीन जे लग भौज धरना विनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर बाबा दियो दर्श मन जाओ भगत इो मन ठहरा बलियो चिराग अंधियार में बलियो चिराग अंधियार में सब काली उतरी एक नाम धर्मा परगत सरलियार पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ दनिया सत संतोख समाचन अभला सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सोभा इहो

तीनी भगत प्रेम लिमलाई ताते अंगत अंग संग पियो शायर तीन शब्द सुरत की नीव खाई गुरु अमरदास की अकथ कथाएं एक जी कछ कही ना जाई छोटी सिद्ध सकल दान को।

0: बाले बाले जाओ श्याम सुंदर को अकाथ कथा जाकी बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोए करो कृपा ठाकुर अपनी मूलालन से प्रीत बनी रहा तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच.
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

0: तो बैठे घर आया, ब्रह्मे कसम कदम अंत न पाया। राम भगत बैठे घर आया, राम भगत बैठे घर आया।
1: भजन आउंदा है एक संत वैष्णव कबीर जी दे घर आ गया। कबीर नूं चाह चढ़ गया, मत्था टेकिया, परिक्रमा कीतियां। ये पुरानी सभ्यता सी, सिख नूं सिख मिल पवे परिक्रमा करके ते मत्था टेकदा सी, मैनूं गुरु मिल पिया। नमस्कार कीती, लोई नूं आवाज मारी, लोईए आ साडे भाग जाग पै कर, संत आ गया। उठिए कि रेंदे सी, आ गया प्रभु दा प्यारा। बैठ गया, इधर वेख इधर वेख, उन्हें कुछ वेख्या, ताणी वेखी, जुलाया वाला सारा समान वेख्या। ये वैष्णव सी, ये छूत छात नूं मन्नदा सी, विष्णु दा उपाशक सी। एवं वेख के कह लगा, वे तू सो जुलाहा कबीरा, तू जुलाहा। कबीर कहता, हाँ जी, होछी मत मेरी, मैं जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा। मत मेरी होछी है, अकल मैनू है नहीं, जात भी मेरी जुलाहा दे कर मेरा जन्म होया। पर मेरे ते परमेश्वर ने कृपा की थी, मैं नाम दा लहा खटदा, सब आखो सतना। कबीर जी कहने लगे, की शकोगे? वो कहिंदा, ओ कबीरा, मैं तो तेरे घर आण के पछताउणा भी मैं आ क्यों गया। अठाठ तीर्थां दी यात्रा कीती सी, सारा भजन सारी यात्रा एवें ही गई तेरे घर आके। तू मैनू खाण नूं पुछदा, मैं ते पछताउणा, रात पै गई आ, जा किते सकदा नहीं, मुड़ के फिर मैनू यात्रा करनी पऊगी। कबीर जी कहण लगे, संत जी, हुण तुसीं आत गए ही हो, पिटे ते गए ही हो, तुहाडा सारा कर्म धर्म सारा नष्ट ते हो ही गया, मुड़ के यात्रा कर लियो, होर टुबा ला लियो। पर जे तुसी ना कुछ खादा तो असी भी तुहाडे सिर चढ़ के कुछ नहीं खाना, ये संताप भी तुहानू लगेगा। शास्त्र पढ़ लो, हुण जां कोई शर्त रख दियो, असी पूरी ना कर सकी। ओ कहण लगा, भी कबीरा, मैं हैगा विष्णु दा उपाशक, जे तेरे घर विष्णु नूं मैं रोटी खांदियां वेख लवां ना, ते मैं भी रोटी खा लूंगा। कबीर जी कहन लगे, संत जी, इन्नी देर ला दीती, तुसी आउंदे ही कह दिंदे, अद्धा कम मुकया होना सी। इन्नी देर ला दीती, हुण इह है नाम जपण वाला, उधर है दिखावा, सब आखो सतनाम। कबीर जी कहन लगे, लोईए खिचड़ी तैयार कर। कबीर का जो खाना सी ना मन पसंद, वो खिचड़ी सी, ते गुरु अमरदास महाराज का जो मन पसंद खाना सी ओगरा सी, ओगरा लून तो बिना, मिठे तो बिना, जिवें दलिया हुंदा इस तरह। लोईए इन्हां महापुरखां दी कृपा दा सदका, अज साडे घर विष्णु भगवान आउणगे, खिचड़ी तैयार करो। खिचड़ी तैयार हो गई, इन अरदास कीते, हे निरंकार, हे परमेश्वर, हे सर्व शक्तिमान, मैं तेनू खेचण नहीं सी देना चाहुंदा, तू ते जर्रे जर्रे जी, कोई ऐसी जगह नहीं जिथे तू नहीं, तू वसदा है, पूरी शक्ति च वसदा है। पर साध खड़े पै गए, मैं तेनू खेचण नहीं सी देनी चाहुंदा, ये कहिंदा रोटी तां खानी, तू आवे तो तू कृपा कर, तू जर्रे जर्रे के सारे रूप तेरे ने। अज तू ये साध दी खातर संत दी खातर ये वैष्णव संत है, तू विष्णु भगवान हो गया। अजे वह नमस्कार की जा सिर चक्या तो विष्णु बैठे, ये गल गलत नहीं। बाणी का वचन है अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा, ये बाणी का वचन वो बेअंत है। अपने भगत की रक्षा वास्ते नरसिंह बन गया, बाणी च वचन है ना, भगत हेत नरसिंह भेव। अज नाम जपने वाले ने अरदास की, नाम जपने वाले ने अरदास की, हे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज मैंने तू गुरु नानक दसें। मैं जो तेरे दर्शन करा तो मैं गुरु नानक के रूप च करा। सब आखो सतनाम, गुरु दूर नहीं जे, ये भावना की लोड़ है। इन्हों की भावना जे असि इन्हों अखा नाल वेखांगे तो पत्रे दिसणगे, स्याही दिसूगी, आ मंजी साहब दिसूगी। तो जदों अंदरले नैणा ना वेखांगे ना तो सानू शब्द दे विच गुरु नानक दिसूगा। अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा, जिसनों लाए सच तिसे उधारदा, जिस दे होवे वल कदे ना हारदा। हुण अरदास कीती विष्णु प्रकट हो गया, विष्णु कहण लगे कबीरा आ जा बह जा इत्थे, लोइए तू ही आ जा। कबीर संत नूं कहण लगा महापुरखो तुसी आ जाओ इत्थे बैठो हुण पंगत च। ते विष्णु भगवान कहण लगे ए इस पंगत दे विच बैठण दे लायक नहीं, ए नहीं बैठ सकदा। कमालिया तू बह जा, कमालिए तू बह जा, लोइए तू बह जा, ए संत इत्थे बैठण दे लायक नहीं। हैरान हो गया, मैं इहदा पुजारी इहदा उपाशक जुलाए दे घर च आ गया, मैनू कहिंदा है इसे बैठने दे लायक नहीं। वो कबीर दे चरणा च टह पिया, कहन लगा कबीरा मैनू तो इउं जापदा जिउं तूं मैनूं मोर लिया होया। सब आखो सतनाम। कबीर कहन लगा हां इहदा मुल है, ये सोने चांदी नाल नहीं मिलदा, खर्च कीतिया नहीं मिलदा, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। ये मन दित्या सतगुरां दा बचन आपां हुणे पढ़े, मन भेजे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास। ये मैं लिया मोल मन दे के, मन दे वटी लिया। अब मोहे राम अपना कर जाने, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। मैनू ये मेरा मन मन गया भी राम मेरा अपना है। जदों असी गुरु नू अपना जान के बेनती करांगे ना तो जरूर सुनेगा। अपना माण है ना, मेरा डैडी है, मेरी माता है, माण है ना। तो जदों असी गुरु नू अपना जाने असी गुरु दे बन जावांगे। अरदास करने वाले नाराज कहिंदे जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, कहो बेनती अपने सतगुर पाहे। बेनती करो गुरु नू अपना जान के, जब तुसी गुरु नू अपना जानोगे ते गुरु तुहाडा अपना बन जाऊगा, तुसी गुरु दे बन जाओगे। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। संत जी ब्रह्मे कथ कथ अंत ना पाया, ते राम भगत बैठे घर आया। आ वेख ला घर च बैठा ही जिहदा अंत ब्रह्मा नहीं पा सकिया, कथ कथ के नहीं पा सकिया, राम भगत बैठे घर आया। कहत कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत ने। सतगुरां ने आप ही बख्शिश की है, अज्जे दर्शनों का प्रोग्राम बनया। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਇਹ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਦੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਝਗੜੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਬਲਦੀਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਊਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ ਹੁਰੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ 20 ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸੇ ਤਾਰੀ ਹੋਮ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਦਾਂ ਵਿਆਦਾਂ ਉਪਾਦਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਲੇਸ਼ਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਰੋਗਾਂ ਸੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੁੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਥਾਂ

त्यसको हो प्राप्त स्वामी त्यही महाराज कहती अपनी कृपा जिस आप करे ये तो आप कृपा करे ये दाता भी उसको मिल सकती है सब आखो साधन ये तो आप मेहर करे संगत भी उसको मिलती है ये तो मेहर करे अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले ऐसा वचन आओ इन तुकन सारे पढ़ो कोई रचना खाली ना रवे फिर कीर्तन दी आप समाप्ति करूंगा।

राग गौड़ी ग्वारेरी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीबर अते बाकी सुर शुद्ध लगदे हन। इस दे आरोह विच ऋषभ पंचम अते अवरोह विच पंचम वर्जित है। इस दी जाति औड़व शाड़व वादी गंधार संवादी धैवत अते समा शाम है। इस राग विच गुरसिख हर बोलो मेरे भाई शब्द दा कीर्तन कर रहे हन भाई अवतार सिंह।

कर मारा त्रिकल लाकन के छोती बस कपाटू जय जान तो ब्रह्म कर्म सफो निश्चय कर्म कौ नानक नित्य ध्यावे बिन सत।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है

जब इश्क निमाज च नीती या की मंदिर ते की मस्जिदी चीजें की कोई कमी सी हकीकत तो प्यार है ये प्यार नहीं तो मंदिर ची घटी जान का कोई ना मस्जिद भी मथे टेकने का कोई हकीकत प्यार तो भुले शाह लिखता है जब इश्क निमाज च नीती है क्या मंदिर ते क्या मसीती है फिर जद यार ने आन दीदार दिता यार को वाहिगुरु धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने उस अकाल पुरख नु अपना यार के सुन यार हमारे सच यार कहते प्यारी तेरे नाल बहुता प्यार कि पुराना आदमी हो मेरा यार सब तो श्रोमणी प्यार करना।

yourself, my eyes. Hans Kudariya Maharaj, Satsang Rupi Mansarovar Jai. Aap Ji, Bhanguru Amar Das Patshah Ji Di Bhakshish Parampati. Aaj Puru Vashi Di Dhaar. Bhakshish Variyad. Gangaram Te Kitni Rehm. सोचेंगे गंगाराम ने कुल की थी और गंगाराम ने तक एक मेरी की थी कि रोज कर जाते रोज दूजे पास माया जितनी लग जाए गुरु वाल संकोच कर नहीं माया तो वही साड़ी है जी चंगे पास गुरु वाली साईं तुलसीदास जी ने लिखा माया है दो भाद की दो चलावे राह एक ले जावे नरक को एक सब शराबा को बाबा चमाया ला दो नरका का बुआ खुल जाए गुरु के लेखे ला दो और नरक न जोड़ दो जिथे तन मन न आके जुड़े अपने तनों में पवित्र दर्शन ते शब्द दीते शब्द गुरु का रूप है बाबा जी बचन कर दे सर ना लेके अरदास करने की लोड़ ही बेनती की बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कह लगे ना लेके अरदास तू किसी नु की दे सकदा ए तां शब्द वाला ही प्यार वाले दे मन प्रेरदा मानो शब्द वाला ही इश्क दे हिरदे ते बह के आप प्रेरदा आप शब्द दा आदर कराउंदा है बाबा जी कह लगे फिर बख्शिश गुरु आप ही तो आप जी ये समा एक दिन भी दो दिन भी कुछ दिन आप निकले गुस्सा अमृत वेले भी आके जुड़ दे जिस प्रोग्राम नु कदे बना रहे सन बरखुरदार सरदार गुरचरण सिंह जी दीवा हरबंश सार कर्नैल सिंह जी सार आकम सिंह जी और सारे गुरुद्वारे के प्रबंध आई साहब कदों आ रहे हो प्रोग्राम बने वीक नए प्रोग्राम सार दास पहुंच गए मार्ग के दर से हाजरियां भर रहे हैं बाकी दो ही दिन विच रहे हैं कल तो कुछ है सेवका ने अगले प्रोग्राम से चला जाना फिर नदी नाप से इतने साल 50 साल हो गए कीर्तन कर रहे हैं पहली बारी इस टाउन के दर्शन हुए गुरु खाले दर्शन आगे पीछे पड़े अरे सस्थान आओ जो अगला प्रोग्राम है आप जीना निकने में अखंड पाठ भी है कीर्तन भी है वो प्रोग्राम जिस तरह आप जी ने बनाया है संगत च अनाउंस कर दो ताजो आने वाले प्रोग्राम जी आप इसी तरह जुड़ के गुरु की खुशियां प्राप्त कर सको और गुरु अमरदास पातशाह आप जी की महान महान बख्शिश करा आप जी दे दरो करो वरसाए हो सिख माई पाई पातशाह आप जी की दित्ती हुई दात सफल कर दे शब्द गुरु का सत्कार करते कीर्तन कौन अरदास कराते हैं आप अपने गुरसिखा दमाइया च बरकत पाओ आप अपने गुरसिखा सिखी जीवन बच्चे बच्चिया चढ़दिया कला

नारद मुनि ने चरणा से ढह के किस प्यार वाले मन ने अरदास की थी। नारद जी तुस तानू जो मेरे भगवान दे दर्शनां नू जा रहे हो, नारद तुसी तानू जिन्हां नू मेरे भगवान दे दर्शन मिलनगे, नारद ने तकिया प्यार वाला मन, ए प्यार वाला कोई तपस्वी अखां विचों अथरू कह रहे है। नारद ने कहा क्यों रोंदा है, तैनू भी किसी चीज की लालसा है, जंगल बियाबान दे विच समाधि लगा के बैठे हैं, तू की चाहुंदा है। इस दियां कुब्बां निकलियां ते प्यार नाल इसने पढ़िया, नारद मेरी तो एको मंग है केड़ी।

आटा दिखी थी आशा वाला जीवन बड़ा स्वादला हुंदा है आपको श्री भाई आशा वाले जीवन में आस है ना इंतजार है ना एदे च बड़ा सुख है एदे च कोई अगम्मी रस है साईं दी याद विच मालिक दी याद विच यादां भी पूरियां हो जांदियां पर प्यारी सत्संग याद विच भी रहना ए भी अवस्था है मालिक दे दर्शनां दी प्यास विच इस जीवन नूं बतीत करना हजूर फरमाउंदे ने मैं उस तों भी कुर्बान जांदा हां जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तके बल पर जैसा इस प्यास च जीवन बतीत होंदा रहे फिर आपे मालिक मेहर करे प्यारी सत्संगत जे एदियां आसां पूर्ण तां साडियां भी पूर्ण आखो श्री अकाल।

दुनिया का तारक दास है। आज जंगल बियाबान समाधि लगा के बैठा है। कौन? मिठ बोला गुरु। कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। हर समय मिठाई बोल। दुनिया का उद्धार करता एडा दयालु गुरु है। जे गलतफहमी विच आके कोई इस नूं वट्टे मारदा है, ए गुरु ओदे नाल भी प्यार करदा है। कौन है उह जिहा मिठा गुरु? प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। आओ इस परोपकारी गुरु का नाम एक बारी सारे जपो। कोई रसना भी खाली ना रह जाए। सारियां नूं दातां देण वाला हिंदू मुसलमान सारी सृष्टि के बंदियां नाल प्यार करन वाला मेरा गुरु नानक। आओ तुसीं अदब सत्कार विच आओ। जिस तरह जुड़े हो गुरु नानक दे प्यार विच, नेत्रां द्वारा दर्शन मन जुड़िया है। आओ रसना भी पवित्र करो। प्यार नाल सारे आखो धन गुरु नानक। अजे भी सारे ने नहीं किया। गुरु नानक का नाम लाभदायक है। ख्याल आएगा भी कितना लाभ है गुरु नानक का नाम जपण दे नाल, क्योंकि आप सारे विहारी हैं ना। कोई काम करिए लाभ पहला सोच ले, चाहे दफ्तर जाने वाला है, चाहे दुकान ते बहन वाला है, कोई भी किता करने वाला है। अपनी ड्यूटी देंदे हैं सोचता है भी इतनी कि मैनू आमदनी हो रही है, इतनी कि मैनू तरह मिल रही है। कई ख्याल आएगा कि भाई गुरु नानक का नाम जपिया मिलता की? आ जाते ना मन जो होया, मन के ही कारदा करता रहता। कदे गुरमुख बन जाता है, कदे मनमुख बन जाता है, कदे दानी बन जाता है, कदे मंगता बन जाता है, कदे पुन्नी बन जाता है, कदे पापी बन जाता है, कदे नीवा हो जाता है, कदे उच्चा चढ़ जाता है टीसी दे, कदे बुरा हो जाता है, कदे भला। ये मन का स्वभाव है। तो फुरना बन जाता है ना। तो आओ पहला पूछिए किसी महापुरुष नूं, जी तुसी रब दे प्यारे हो, गुरु नानक दे प्यारे हो, दसो जे गुरु नानक जपांगे तां की मिलेगा? लिखिया है महापुरुषां ने, नाम लिए सतगुरु नानक के, नाम लिए सतगुरु नानक के, दुख दर्द रोग मिटे सो भयानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, सुख संपत भोग मिले सो अचानक। नाम लिए सतगुरु नानक के, जग काग चुगे मिल मोती मानक। सारी संगत मिलके आखो धन धन गुरु बाबा। ए तां किसे गुरु दे प्यारे दी दलील। पर आओ गुरु तो पुछी, गुरु तो किस तरह पुछांगे? बाणी द्वारा। बाणी द्वारा गुरु नानक बोलदा है। बाबा जी वड्डे बाबा जी बचन करदे, संतो भावना बना गुरु ग्रंथ साहिब दे उते, तू पावना बना गुरु नानक वाली। रोज कहिंदा जागदी जोत, जे जागदी जोत जान के तू पूजा करेगा। ए बाबा जी दी पवित्र पावन रसना तू बचन सुने है। बाबा जी कहिंदे सन रुमाल चुकन दी कोई लोड़ नहीं, आपे हुक्म मिलेगा। खुश रही ये तन्ने दा पत्थर बोलदा है साडा हाजर नाजर जागदी जोत, पर गुरु गुरां की दे गुरु ग्रंथ साहिब नहीं बोलदा। बोल बाणी सदा बोल रही है, गुरु बोलता। तीन अखर लिखे होते हैं चौरस तेज स्टाफ। तेज गड्डी आ रही है, जिन्हें स्टाफ कर लिया एक्सीडेंट तो बच गया। स्टाफ बोल रहे हैं तीन अखर, दवाइयां पै देंगे बोलते हैं ना। किस तरह उठ जाके ब्रेक लगा देने हैं? कोई होर तो नहीं बोले, किसी ने होरने तो इशारा नहीं किया, अपने आप ही ब्रेक लग जाती। फिर प्यारी साध संगत, वह तो तीन अखर हैं जिन्होंने स्टाफ के उत्ते अमल किया एक्सीडेंट तो बच गए, जिन्होंने अनगहली की मोटर मुद्दी फौरन हो जाती। पर तीन अखर मैं बोलते हैं इधर तो प्यारी साध संगत,
1430 ਸਫਾ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਆ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਠਾਕਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੋਲਨਤਾ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਤੁਰਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਤੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਸ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ। ਕਿਤਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਬਤਮਾਈ ਪਾਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।

0: सब तो वड्डा धर्म साईं दी बंदगी। सगल कर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल, ते सब तो निर्मल करम। जिस वेले तू हरि दा नाम जपेगा तेरा मन निर्मल होगा, मन निर्मल होएगा फिर तेरे कर्म भी निर्मल होंगे। निर्मल कर्म करने वाला सदा सुखी है, पाप करने वाला दुखी है। पापी कर्म कमांदे कर दे आए, इस वास्ते सिमरन कर। जी मन नहीं लगता, मन बड़ा चंचल है। बाबा जी वचन करते सन मन ना लग, मन बेशक ना लग, पर फिर भी सिमरन कर, एदा भी लाभ।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

अचरज रूप संतन रचा नानक नाम रंग बगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचा नानक नाम रंग अमृत बेले

बिना पद पाया था तीन एक संख्या इना जनता के वहां कितना ही वेखी जग पाया इकरा नू तू मेला का पद उठाया गुरु कृपा तो जानिया जिस सदा बहाया जय जय सच मारा सतनाम सिवा।

चुप्पी मार के खट खंड खट खंड मान लो आज हजूर फिर चले गए। सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए कि नारद वे नदी डूब देवी नानकी भी कई ने जाती थी जैसे तेरा वीर वे नदी तो बाहर नहीं निकली और देवी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूब तो डूबिया उतारना पशु परे मुगत को उतारे पाहन पास उतारे हजू सचखंड पहुंच सचखंड वैसे नरम अगे नूर ही जानना नहीं चाहिए। उस ज्योति अंदर जाके हजूर लीन हो गए जो जर में जर आए खतानन त्यो ज्योति सन जो कुछ समय के बाद उस ज्योति जो सोना कांता है सतगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नान जी स्वागत मात लोग कल्प की जीवन निर्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए। हजूर ने किया मेरे दादा जी पहले कहो सत्खंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते कहना से सब कुछ आ गया जित दर लख मोहम्मदा का ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम्हें इन्हों अपने नींद क्यों नहीं आवाज आई इन्होंने मैं इन्हों को दुनिया से भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम इन्होंने अपना नाम जपाए अपने पति अपनी जनानियों का नाम भी मैंने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे लिए नींद नहीं हो रही साहबान ने हथ की वाहेगुरु फिर करो कृपा असि मातरों में जाके की दुनिया में तो उस वे कहते अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा एक ओंकार।